तीसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331 93 94 94 1 है।

तो सती जी जबरदस्त, थैंक यू, डेर डेर ज्यादा मेहरबानी, शुक्रिया द और इधर लो और द कतल लो, डेर डेर ज्यादा मनाना, थैंक यू सो वेरी मच, खुशहाल रहा तो उससे डेर डेर ज्यादा मनाना द महफिल के दिशा में ले दो हम डेर डेर ज्यादा, शुक्रिया द जान डेर ज्यादा ख्याल साथ ही द लुई अल्लाह पामान।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
2: We'll be back, right after the commercial break.
3: ये है एक दुनिया इल्म अमल की, जहाँ पर नया दिन सिखाता है कुछ नया, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की लगन जगा रहा है। द कादरी आजम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस खैबर पख्तूनख्वा, एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग पर मबनी जदीद निजाम तालीम, सेंट्रल एग्जामिनेशन सिस्टम, तफरीही और मालूमाती टूर्स और इल्म अमल का एक मुनज्जम मरबूत तालीमी माहौल। 200 से ज़ायद तलबा और तालिबात के लिए इस साल भी मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट बराए फर्स्ट ईयर का इनेकाद 5 जुलाई 2026 को तमाम कैंपसेज में होगा। आइए और अपने बच्चों के कामयाब

अब आप लोगों की टेलीफोन कॉल्स को भी साथ साथ एंटरटेन किया जाएगा, शामिल की जाएंगी आप लोगों की लाइव कॉल 09238280495। और इसी के साथ साथ ये कि हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के जो व्हाट्सएप के मैसेजेस हैं, व्हाट्सएप के पैगाम को, व्हाट्सएप के मैसेजेस को हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि मेरे पास वो वाला कॉल नंबर अभी नहीं है। आज भी मैं मतलब वो लाना भूल गया, पर रात का अगर प्रोग्राम किया मैंने तो वैसे करना चाहिए रात का प्रोग्राम या नहीं करना चाहिए, ये जरा मुझे थोड़ा सा आप कंफर्म कर दें। तो मैं क्या बात कर रहा था जनाब, तो जनाब दिल का मौसम हमेशा खूबसूरत रखिएगा, लोगों को माफ कर दीजिएगा, अपने अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने अपनों को वक्त दीजिएगा, मुस्कुराहटें बांटिएगा, दुआ दीजिएगा और मोहब्बत कीजिएगा, क्योंकि जिस दिल में जो है ना मोहब्बत बसी हो ना, वहाँ हसद के कांटे नहीं उगते जी, वहाँ सिर्फ वफा के फूल उगते हैं या वफा के फूल वहाँ खिलते हैं। और मोहब्बत भी एक अजीब चीज है ना, ये आंधी की तरह नहीं आती, सब कुछ मतलब ये कि उजाड़ दे बल्कि बारिश की पहली बूंद की तरह आती है, खामोशी से दिल पर गिरती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी रूह को महका देती है, फिर इंसान को हर खूबसूरत मौसम या हर मौसम नहीं हर मौसम इंसान को जो है खूबसूरत महसूस होता है, खूबसूरत लगने लगता है, हर रास्ता आसान महसूस होने लगता है। और इसके साथ साथ ये बात भी मैं करना चाहूंगा कि और हर दुआ में एक एक इनाम बेख्तियार शामिल हो जाता है जी। सोचिएगा जरा कि अगर आज आसमान पर ये बादल ना होते तो शायद जो है ना मौसम इतना हसीन महसूस ना होता, और अगर दिल में मोहब्बत ना हो तो शायद जिंदगी भी सिर्फ दिनों और रातों का एक सिलसिला बनकर रह जाए। और यहाँ ये बात भी मैं कहना चाहूंगा कि इसलिए अपने दिल का मौसम हमेशा सरसब्ज रखिएगा आप, और इस चीज का भी ख्याल रखिएगा कि आपके साथ जो जुड़े लोग हैं उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है आपने, ठीक है ना। दिल के मौसम को सरसब्ज रखना है आपने, वहां उम्मीद के दरख्त उगाइएगा, खलूस के फूल जो है ना आप लोगों ने खिलने देने हैं, और मोहब्बत की खुशबू जो है ना बिखरने देनी है, क्योंकि खूबसूरत दिल ही जो है ना खूबसूरत जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। यहाँ एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा जी कि दिल की बाजी जो है ना हार जाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है भाई, इतना कोई मुश्किल काम है ना कि मैं इस बात पे क्या कोई बात करूं। साथ साथ मैं आप लोगों के लिए एक ट्रैक भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाता हूं और साथ साथ आप लोगों के साथ बातों का सिलसिला भी जारी और सारी रहेगा। अगर आप मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 09238280495। अगर आप आउट ऑफ सिटीजन है मतलब सवाबी से बाहर से कॉल करेंगे तो आपने साथ में एरिया ऑडिशन कोड जो कि डिस्ट्रिक्ट सवाबी के सवाबी सिटी का कोड आप लोगों ने डायल करना है, तभी आप लोगों का नंबर मिलेगा, अदरवाइज आप लोगों का नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 0938 का ये इजाफी एरिया कोड आप लोगों ने डायल करना है, या अगर आप सेल फोन से, मोबाइल फोन से, आईफोन से, कॉल फोन से, या अपने किसी स्मार्टफोन से या सिंपल फोन से कॉल कर रहे हैं तब भी आप लोगों ने 0938 का एरिया एडिशन कोड ये मतलब साथ में अटैच करना है, तभी आप लोगों की कॉल मिल पाएगी यहाँ पे।

0: back. Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल।

0: back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: खुश खबरी, हगा ठोल बीमारान चचा हडुकी माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो औदला सुनो गुतो रघुन बन शिवी औया गुते बेहरकत शिवी औद चाचे दखपो दुकुंडो दन न लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगटोली जनाना चिदचा खपे औला सुना सुनकीगी औ हगटोल मरीजान कमचे दमला दमखरो याद पटो मरीजान हुई याद माशुमान उखपी कगी हुई नु दहा के टोलू मरीजानु द पारा द खुशालय खबर उस बाद हर इतवार पर रोजबांदी सहर द अथो बजो नवाखली माजीगर तरसलो रो बजो पोरे द इस्लामाबाद औ द पेखबर नुमवड़े डॉक्टर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अथो बजो नवाखला माजीगर तरसलो रो बजो पूरी तसो तशरी प्रवड़े से नुपा तैयार साथे बिलाल प्लाजा अलसेद CNG टा महामख कुंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी। मजीद द मालूमात द पारा याद नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर राबितो के 0314-15-13-232 यानि के 0314-15-13-232।
3: पुख्तुनख्वा मेडिकल सेंटर शाह मंसूर सवाबी कमजे चे द मलिक नु मवड़े डॉक्टर्स ब मौजूद हुई यानी प्रोफेसर डॉक्टर इब्राहिम शाह कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सुरैया इसरार गायनाकोलॉजिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पवाद जान कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट यानी द रघुनो और द पटो स्पेशल डॉक्टर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलमान कमाल अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अब्बास चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट और डॉक्टर तारिक शहाब स्किन स्पेशलिस्ट ब मौजूद हुई जमुई सहूलियात थी NICU यानी दमाशुमान दपारा दशिशो सहूलत इको ECG एक्सरे अल्ट्रासाउंड लेबोरेटरी फार्मेसी ऑपरेशन थिएटर औ लेबर रूम द मरीजानो दपारा स्पेशल कमरे द रेडियो दिल पर पवास्ता रातलून के पेशेंट्स दपारा बापा ऑपरेशन लेबोरेटरी और मेडिसिन बांधे 10% ना 33% कोरे डिस्काउंट हम मौजूद दे पता दा पख्तुनख्वा मेडिकल सेंटर नेज़्द बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स शाह मंसूर सवाबी टेलीफोन नंबर दे 0938-280-139 मोबाइल नंबर दे 0303-292-6858।
4: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے۔
3: پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی، ٹیلی فون نمبر دے 09038280139، موبائل نمبر دے 03032928858۔

अब कहाँ वो महफिलें हैं, अब कहाँ वो हम नशीन, अब कहाँ से लाएं उन गुजरे हुए लम्हात को। ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन, के हाल कैसे आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? यकीनन ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, और जहां जिधर भी होंगे अच्छे वन फर्स्ट क्लास मजों के साथ अपनी जिंदगी या फिर अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जनाब, रात के इस हसी पहर में जब आसमान अपने दामन पर सितारों की चादर सजाए खामोशी से मुस्कुरा रहा है, जब ठंडी हवाएं दरख्तों के पत्तों से सरगोशियां कर रही हैं, जब चांद अपनी चांदनी को जमीन

ओके जनाब, एक मर तो फिर मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ ताहिर जमान आप लोगों के संग संग आप लोगों के साथ साथ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM 94 रेडियो दिलबर 24 से बहुत बहुत शुक्रिया रही सुनने का। एंड रेडियो दिलबर की नशरियात आप सुन रहे हैं लाइव एंड एक्सक्लूसिव FM 94 की फ्रिक्वेंसी स्किल्स पर। अच्छा खैर, आपके मैसेजेस, आपके पैगामात और आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव्ड हो रहे हैं, इनको हम साथ साथ शामिल करते हैं। जी नंबर चेंज कर दिया और बहुत सारे लोग जो है ना गिल्ला कर रहे हैं कि भाई 03444400 वाला नंबर जो था वो बेहतरीन था, अच्छा था और ये कि वही नंबर आप यूज करते हैं। दरअसल ये है कि नंबर वो मेरा

अच्छा जी, नंबर के हवाले से मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस तरह के भी होते हैं जो कि बिन बताए जो है ना अपना नंबर चेंज कर देते हैं। जनाब, आज के दौर में शायद जो है ना मोबाइल नंबर सिर्फ जो है ना चंद हिंसों का मजमुआ नहीं होता, या मतलब ये ना कि आज के टाइम में मोबाइल नंबर सिर्फ चंद हिंसों का या मतलब डिजिट का जो है ना कोई मजमुआ नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन चुका है, एक ऐसी पहचान बन चुका है, एक ऐसा रास्ता बन चुका है जिसके जरिए जो है ना दिल दिल से मिलते हैं, दुआएं एक दूसरे तक मतलब जो है ना पहुंचती हैं, यादें अपनी मंजिल ढूंढ लेती हैं। सोचें जरा आप ये बात तो मतलब जो है ना अपनी सोच में रहिएगा कि आप सुबह उठें, किसी को अपने होने के एहसास दिलवाएं या अपने होने की मौजूदगी दिलवाएं, किसी अपने को जो है ना याद करें, उसका नंबर मिलाएं, और दूसरी तरफ से जो है ना सिर्फ एक आवाज आए कि ये नंबर अब मौजूद नहीं है। यकीन मानिए कि इस एक जुमले में जो है ना कितनी खामोशियां छुपी होती हैं, कितने सवाल छुपे होते हैं, और कितनी ही मतलब जो है ना बेचैनियां जन्म लेती हैं। दिल फौरन जो है ना सोचने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ है या क्या हुआ होगा, मतलब क्या कोई इस तरह का एक्सीडेंट आया है, नंबर क्यों बदल गया है भाई, नंबर क्यों चेंज हो गया है, सब खैरियत तो है, और मतलब जो है ना कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं आया, कहीं वो शख्स जो है ना हमेशा के लिए दूर तो नहीं चला गया या दूर तो नहीं हो गया। अगर वो शख्स जो है ना दिल के करीब हो तो उससे रोज बात होती हो, ये भी मतलब जो है ना एक बड़ी बड़ी जबरदस्त किस्म की बात है जी। मेरे माइंड में जो बात आ रही है बड़ी जबरदस्त किस्म की बात आ रही है, इस बात को हम आगे जो है ना एक्सप्लेन करते हैं। दीवाना दिल में रखो गया है जाना। अच्छा, तो मैं क्या बात कर रहा था, बात करते हैं जी। तो सोचिएगा जरा कि आप सुबह उठें, किसी को याद करें, उसका नंबर मिलाएं, और दूसरी साइड से या दूसरी तरफ से जो है ना ये एक आपको मतलब सुनने को मिल रहा हो कि ये नंबर जो है ना अब मौजूद नहीं है, बराए मेहरबानी जो है ना आप कॉल ना करें। तो यकीन माने ये जो जुमला है इसमें बहुत सारा मतलब जो है ना कुछ छुपा हुआ है, इसमें कितनी खामोशियां छुपी होती हैं, कितने सवाल छुपे होते हैं, और कितनी बेचैनियां जन्म लेती हैं। दिल फौरन जो है ना सोचने लगता है कि आखिर क्या हुआ होगा, नंबर जो है ना क्यों चेंज कर दिया है, सब खैरियत तो है, कहीं वो शख्स जो है ना हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो गया, या फिर दूर तो मतलब ये है कि नहीं चला गया। अगर वो शख्स जो है ना दिल के करीब हो, उससे रोज बात होती हो, उसकी आवाज रोजमर्रा की मतलब जो है ना आदत बन चुकी हो, तो नंबर बदलने की खबर भी एक छोटे से बिछड़ने जैसी मतलब जो है ना फीलिंग्स देती है, या फिर महसूस होता है ऐसे कि मतलब जो है ना बंदा बिछड़ गया है या फिर बंदा चेंज हो गया। भाई इंसान बार बार जो है ना पुरानी कॉल्स और पुरानी मतलब जो है ना कॉल लॉग या कॉल हिस्ट्री ये देखते हैं, पुराने पैगाम पढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद कहीं ना कहीं जो है ना कोई सुराग मिल जाए, कहीं ना कहीं जो है ना कोई रास्ता निकल आए। लेकिन जनाब फिर एक दिन जो है ना अचानक वही शख्स खुद रابطہ करे और कहे कि मैंने नंबर बदल लिया था, ये मेरा नया नंबर है, महफूज कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, तो उस लम्हे जो सुकून दिल को मिलता है ना वो लफ्जों में बयान नहीं हो सकते जी। उसे लफ्जों में बयान करना आसान नहीं है, जैसे जो है ना किसी खोई हुई चीज का दोबारा मिल जाना, जैसे बरसों के बाद जो है ना किसी पुराने दोस्त से अचानक कोई मुलाकात हो जाना, जैसे बंद कमरे की खिड़की खुल जाए और ताजा हवा अंदर आ जाए। असल खुशी नंबर की नहीं होती, असल खुशी जो है ना इस बात की होती है कि उसने जो है ना आपको याद किया है या याद रखा है, या मतलब जो है ना ये कि उसके जहन में आप थे, उसने आपको अपनी जिंदगी के दायरे से जो है ना ये कि बाहर नहीं जाने दिया, उसने अपना नया रास्ता भी मतलब जो है ना आप तक पहुंचा दिया। यही एहसास दिल को मुस्कुरा भी देता है कि तहल्लुक अभी बाकी है, बातों का सिलसिला अभी जिंदा है, और आवाज का रिश्ता अभी टूटा नहीं है। सो जनाब, रिश्ते हमेशा बड़े बड़े दावों से नहीं चलते, कभी कभी सिर्फ एक पैगाम, एक कॉल, एक इतला या एक नया नंबर भी ये यकीन देते हैं ना कि आप अब भी किसी की तरजीहात में शामिल हैं, अब भी किसी की जिंदगी में शामिल हैं। और शायद मोहब्बत की खूबसूरती भी यही है कि वो फासले कम करने के बहाने ढूंढती है, बढ़ाने के नहीं, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो आज की इस महफिल में भी मतलब जो है ना ये कि बहुत कुछ है, और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दीजिएगा, ठीक है ना।

भाई इतनी जल्दी ये ट्रैक खत्म हो गया, मुझे तो खैर जाना कोई बर गैफ। अगला हम एक इसके बाद मजीद की गुफ्तगू करेंगे और आगे प्रोग्राम को जो है ना लेके चलेंगे, कंटिन्यू रखेंगे प्रोग्राम को। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, हमेशा मतलब ये ट्रैक मैं आप लोगों के लिए एंटरटेन करता रहता हूँ। आज फिर इसे सुन लीजिएगा एक बार।

सो लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइज, हमारी इस महफिल में तेरी और मेरी बातों का हुसन है, यहाँ लफ्ज सिर्फ बोले नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। यहाँ हर जुमला किसी के दिल तक पहुँचने की कोशिश करता है, हर ख्याल किसी चेहरे पर मुस्कुराहट बनने की ख्वाहिश रखता है, और हर आवाज किसी न किसी तनहा दिल की हमराज बन जाती है। और हमराज बनना कैसे है भाई? हाय हाय, दिल लगाया था दिल लगी के लिए और बन गया रोग जिंदगी के लिए। तो मैं क्या कोई बात कर रहा था जनाब, बात हाँ, आवाज सुनकर ऐसा लगता है कि जनाब ये है कि देखिए इस तरह ना कि आवाज किसी की मतलब अमराज कैसे बन जाती है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आवाज किसी की हमराज कैसे बन जाती है? मैं यहां लिसनर्स कहना चाहता हूं एक बात कि जाहिर तो हम अपनी जिंदगी में इतने कोई मगन हैं, इतने कोई मतलब यह है कि गुम हुए पड़े हैं कि हमने कभी किसी को महसूस ही नहीं किया, हमने किसी की फीलिंग्स को समझा ही नहीं है। आवाज कभी सिर्फ आवाज नहीं होती जनाब, ये कभी किसी की उम्मीद बन जाती है, कभी किसी की दुआ बन जाती है, किसी की आदत और किसी तन्हा दिल की सबसे सच्ची हमराज बन जाती है। कुछ लहजे ऐसे होते हैं जो फासले नहीं नापते, वो सीधा रूह तक उतर जाते हैं। कुछ लहजे ऐसे होते हैं जो कि सीधा रूह तक उतर जाते हैं। अब इस बात में भी एक बात है, रूह तक कैसे उतर जाते हैं, ये एक अलहदा चैप्टर है जी। मतलब है कि इस पे सारी रात भी अगर मैं बोलता रहूं, सारी रात भी अगर मैं मतलब बात करता रहूं, तो ये वाला मौजू खत्म नहीं होना। बात मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही? ट्रैक आप लोगों के लिए भाई ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये एक पश्तो का ट्रैक साथ साथ सुनते हैं। तो मैं क्या बात कर रहा था, बात भूल ना जाए ना, बड़ा मैं बुलाकड़ किस्म का बंदा हूँ, मुझे भूल जाती हैं बातें। तो मैं बात ये कर रहा था कि कभी किसी की आदत और कभी किसी तन्हा दिल की सबसे सच्ची हमराज बन जाती है। कुछ लहजे ऐसे होते हैं जो फासले नहीं नापते जी, वो सीधा रूह तक उतर जाते हैं, ना चेहरा नजर आता है, ना आंखें मिलती हैं, मगर फिर भी एक दिन यूं होते है कि एक अनदेखी सी कुर्बत महसूस होने लगती है। शायद इसीलिए कहते हैं कि बाज आवाजें कानों से नहीं बल्कि दिल से सुनी जाती हैं, और जब दिल किसी आवाज को अपना ले, अपना बना ले, तो फिर हर शाम उसके इंतजार में डलने लगती है, हर रात उसकी याद में जागने लगती है जी, और हर खामोशी में उसी की बाजगश्त जो है ना महसूस होती है, उसी की बाजगश्त सुनाई देने लगती है। यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा लिसनर्स के, बाज लहजे ऐसे होते हैं जो फासले नहीं नापते, ये बात मैं कर रहा था ना, वो सीधा रूह तक उतर जाते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आप किस शहर से हैं, कितनी मतलब है ना दूरी है, या कितने दूर बैठे हैं, या कितने करीब हैं, वो सिर्फ दिल का रास्ता जानते हैं। एक नर्म सी आवाज, एक मुखलिस सा सलाम, एक मोहब्बत भरा अंदाज और चंद सच्चे लफ्ज, ये सब मिलकर जो है ना इंसान के अंदर वो जगह बना लेते हैं जहां तक दुनिया की शोर की मतलब जो है ना रसाई नहीं होती, जहां दुनिया की शोर की रसाई नहीं होती। कुछ लहजे मौसमों की तरह होते हैं, लाइक ऐसे कि गर्मी में ठंडी हवा बन जाते हैं, उदासी में मुस्कुराहट बन जाते हैं, तन्हाई में हम सफर महसूस होते हैं, और खामोशी में दिल की धड़कनों का तर्जमा। यहाँ एक और बात भी है जो कि मेरे जहन में आ रही है कि शायद इसीलिए बाज लोगों की आवाज बरसों बाद भी जो है ना सुनाई दे तो दिल उसी शिद्दत से धड़कने लगता है जैसे वक्त कभी गुजरा ही ना हो। और एक और हकीकत यहाँ पे ये बात भी मैं कहना चाहूंगा, एक और हकीकत भी है जो कि मेरे जहन में आ रही है। हकीकत यह है कि खूबसूरत चेहरे वक्त के साथ बदल जाते हैं, मगर खूबसूरत लहजे हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि आंखें सिर्फ मंजर देखती हैं लेकिन रूह सिर्फ इखलास को, लाइक
اخلاق کو بھی جو ہے نا یہاں سے مائنس کریں جی, اخلاق نہیں بلکہ جو ہے نا اخلاص, اخلاص کو محسوس کرتی ہے. اور اخلاص ہمیشہ آواز کے راستے سے مطلب جو ہے نا یہ کہ ایک طریقے سے دل تک پہنچتا ہے نا, دل کا مطلب جو ہے نا سفر کرتا ہے. سو لسنرز, آپ اپنی موجودگی کا احساس دیں جی, مجھے بتائیں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور طاہر زمان کی آواز سن رہے ہیں. میری آواز اوکے آ رہی ہے؟ کہیں کوئی کٹنگ وٹنگ یا مطلب جو ہے نا کہیں کوئی سگنلز کا اپس اینڈ ڈاؤنز آواز میں اگر کوئی اس طرح کی اونچ نیچ ہو تو یہ بھی مجھے بتلا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے 03072700666 یعنی کہ 03-07-27-00-666 اس نمبر پہ آپ ضرور کال کیجیے گا. کال نہیں بلکہ جو ہے نا آپ لوگوں نے میسجز کر دیں, ٹھیک ہے نا, میسجز, جسٹ میسجز.

अच्छा हानी हमारे साथ दे रही है और हानी मुझे कह रही है कि आप मुझे वेलकम कहें हानी को और इसी के साथ साथ जितने भी हमारे नए सुनने वाले हैं नए चाहे वेलकम जनाब। किसी कहना सिर्फ एक लफ्ज अदा करना नहीं होता अपने दिल ये न कि ये अपने दिल का दरवाजा खोलकर किसी को अपनी मोहब्बत अपनी अपनाइयत अपने खलूस में जगह देने का नाम होता है। खुशामदीद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप आ गए हैं जी बल्कि इसका मतलब ये होता है कि आपके आने से हमारी महफिल में रौनक आई है हमारी शाम में रोशनी आ गई है हमारी बातों को एक नई जान मिल गई है। कहते हैं ना कहा जाता है ना कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके कदम जहां पड़ते हैं वहां खुशबू बिखर जाती है जिनकी आमद से खामोश दीवारें भी जो है ना मुस्कुराने लगती हैं और जिनकी मौजूदगी से या जिनके होने से मौजूद होने से मौजूदगी से लफ्जों को भी मानी मिल जाते हैं और महफिलों में भी एक नई ताजगी उतर आती है। ऐसे लोगों को खुशामदीद कहना भी एक फन है एक एहसास है और एक खूबसूरत रिवायत है। और जनाब जब हम किसी को दिल से खुशामदीद कहते हैं तो दरअसल जो है ना हम उसे ये यकीन दिलवाते हैं उसे ये बावर दिलवाते हैं कि आप हमारे लिए अहम हैं आपकी मौजूदगी हमारे लिए जो है ना कीमती है आपका टाइम हमारे लिए कीमती है आपकी मुस्कुराहट इस महफिल की जीनत है और आपकी आवाज या आपका मैसेज करना ये हमारे लिए अच्छा है और ये कि आपकी आवाज इस शाम की खूबसूरती में मतलब ये कि इजाफा कर रही है यही वजह है कि खलूस से कहा गया ये लफ्ज खुशामदीद दिल में अपनी जगह बनाए रखता है। और मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूंगा लिसनर्स कि आज की इस हसीन महफिल में भी जो दोस्त पहली बार जो है ना हमारी आवाज सुन रहे हैं उन्हें भी दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम और वो तमाम सामीन जो मुद्दतों से इस सफर का हिस्सा हैं उन्हें भी मैं मोहब्बत भरा सलाम कहता हूँ। आप ही इस महफिल की मतलब जान है आप ही इन लफ्जों की असल ताकत है आप ही वो वजह है कि माइक्रोफोन के इस पार बैठा हुआ एक शख्स दिल की बातें करने का हौसला पाता है। सो जनाब अपनी अपनी मसरूफियात को चंद लम्हों के लिए जो है ना एक तरफ रख दीजिएगा एक साइड पे रख दीजिएगा दिल की खिड़कियां खोल लीजिएगा मुस्कुराहट को या मुस्कुराहटों को लबों पर सजा लीजिएगा और इस मोहब्बत भरी महफिल में शामिल हो जाइएगा क्योंकि यहाँ हर आने वाला सिर्फ मेहमान नहीं होता बल्कि दिल के बहुत करीब एक अपना बन जाता है और आप सबको एक बार फिर से दिल की गहराइयों से मोहब्बतों की नरमी से और खलूस की खुशबू के साथ वेलकम कहते हैं जी वेलकम कहा जाता है खुशामदीद बहुत बहुत बहुत खुशामदीद। अच्छा जी आयशा हमारा साथ दे रही हैं बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमारा साथ दिया आपने और आप पता नहीं कहां से मैसेज कर रही हैं और आपने कहा कि नंबर क्यों चेंज किया है नंबर क्यों चेंज किया है। अब इस बात की मुझे यहाँ पे वजाहत देनी पड़ेगी कि नंबर क्यों चेंज किया नंबर के हवाले से खैर मैंने पहले भी बात की थी जो मेरा 34 वाला नंबर था वो दरअसल मैं हरिपुर जा रहा था और मुझे एक सिम की जरूरत थी यू फोन की मैंने मतलब जो है ना सिम लेनी थी ना तो सिम की जरूरत मुझे पड़ गई तो टोपी से मैंने वो सिम बाय की जी और सिम जैसे मैंने बाय की कुछ दिन मैंने इस्तेमाल की वो सिम तो उस सिम पे मुझे एक कॉल आ गई कॉल मुझे आ गई कि भाई ये नंबर जो है ना मेरा नंबर है और ये मैं 10-15 सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ रावलपिंडी का कोई मतलब जो है ना बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का कोई डीलर था कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है ना वो बेचा करता था ना और अभी भी ये है कि उसका बिजनेस रनिंग पे है रनिंग पोजीशन पे है और उसके कार्ड्स पे मीडिया पे मार्केटिंग पे वही नंबर जो 34 वाला नंबर था अब तो खैर जो है ना मेरे पास नहीं है तो वही नंबर लिखा हुआ था लोग उसे भी बहुत ज्यादा मतलब जो है ना डिस्टर्ब कर रहे थे कि भाई आपके दूसरे नंबर पे हम कॉल करते हैं तो वो तो कोई और उठाते हैं तो वो तो मतलब जो है ना कहते हैं कि नहीं जी ये तो अरसलान का नंबर है ही नहीं है तो उसी प्रॉब्लम उस बंदे को भी प्रॉब्लम था और मुझे भी मतलब जो है ना प्रॉब्लम काफी सारा यहाँ पे क्रिएट होने लगा कि बहुत सारे उसके जो क्लाइंट्स थे वो मुझे कॉल्स करने लगे उसके जो कस्टमर्स थे क्लाइंट्स थे वो मुझे कॉल करने लगे कि भाई क्योंकि सरिया सीमेंट का वो कारोबार कर रहा था बिजनेस कर रहा था तो एक दिन हुआ ये कि मुझे उसने कॉल की उस बंदे ने जिसका वो नंबर था जो मतलब पहले नंबर इस्तेमाल करता रहा मुझे कहते हैं कि भाई ताहिर भाई आप इस तरह हैं कि ये नंबर मुझे वापस कर दें
मैंने कहा नंबर अगर आपके है तो ठीक है सही, मैं आपको वापस कर देता हूँ, लेकिन इसकी ऑनरशिप जो है वो मेरे नाम पे है अभी, तो ये क्या होगा? ऑनरशिप चेंज करने के लिए या तो आपको सवाबी आना पड़ेगा या मुझे इस्लामाबाद आना पड़ेगा। तो मुझे कहते हैं कि भाई इस तरह है कि ताहिर भाई आप जो भी कहते हैं मैं मानने के लिए तैयार हूं, और आप इस तरह कह रहे हैं कि जैसे आप कहते हैं या मैं सवाबी आ जाता हूं या आप इस्लामाबाद आ जाएं। फिर पिंडी में मेरा छोटा सा काम भी था, ये मिक्सर मशीन मतलब जो रेडियो की मिक्सर मशीन है ये भी मुझे ठीक करवानी थी, इसके भी फीडर्स जो है ना घिस गए थे, ये भी मतलब काम करना छोड़ गई। मेरी अपनी पर्सनल जो होम मशीन है जो मतलब मैं अपने होम स्टूडियो में इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, जिससे अभी आप लाइव आवाज सुन रहे हैं, लाइव प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसके फीडर्स में भी काफी सारा मसला आया हुआ था, क्योंकि कभी एक फीडर में आवाज आती, दूसरे फीडर में मतलब जो है ना आवाज नहीं आती, तो इसे भी मुझे सेट करवाना था, क्योंकि यहाँ लोकल मार्केट से तो ये होती नहीं है, इसकी फीडर्स या इसके पार्ट्स जो है ना लोकल मार्केट से नहीं मिलते, और वहां पे मतलब जो है ना पिंडी में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब जितना भी सामान होता है वो इजीली मिल जाता है। मैंने कहा चलें ये भी ठीक करवा लेंगे, और दूसरे ये कि उस बंदे की अगर सेम है तो ऑनरशिप भी जो है ना चेंज करवा देंगे। अब मैंने ऑनरशिप पहले मेरे अपने पर्सनल नाम पे थी, मतलब ये कि मेरे अपने नाम पे थी, मेरे NIC भी थी, और अब दो चार दिन हो चुके हैं उस नंबर को मैंने ऑनरशिप चेंज कर दी है, अपने नाम से ट्रांसफर करके दूसरे नंबर दूसरे बंदे के नाम पे मैंने मतलब जो है ना मुंतकिल करवा दिया। ठीक है, वो सिंपल प्रोसेस होता है, जब भी आप इनके सेल्स एंड सर्विस सेंटर जाते हैं या फ्रेंचाइज जाते हैं तो वहां पे आपको फिंगर लगाना पड़ता है, एक मतलब जो है ना मौजूदा जो ऑनर होता है उसका, और दूसरा जो मतलब जिसके नाम पे ऑनरशिप होने वाली होती है उसका। तो अब वो नंबर मेरे पास नहीं है, सो इस वजह से ये 03072700666 वाला जो नंबर है ये मेरे पास है, ये मेरा अपना नंबर है, इस पे आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, और ये कि प्रोग्राम में जब भी मैं बैठूं तो इसी नंबर पे आप लोगों ने मुझे रिस्पांस करना है, इसी नंबर के जरिए आपका और मेरा रابطہ होगा। ओके हो गया जी, अब तो खैर नंबर के हवाले से मैंने डिटेल में बात कर दी है, अब मेरे ख्याल से आप नहीं पूछेंगे नंबर के हवाले से।

अच्छा बहुत सारे लोग इस बात पे गिला कर रहे हैं कि थोड़ा सा बता तो देते उस नंबर पे, हम फिर कॉल्स वगैरह ना करते। तो मामला इस तरह है कि मुफ्ती साहब के साथ मैं प्रोग्राम किया करता होता हूँ 2 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो उस प्रोग्राम में भी मैंने ऑन एयर बताया था, रेडियो भी बताया था कि 2-4 दिन बाद सिम में किसी और को ट्रांसफर करने लगा हूँ, तो इस पर रब्ता ना कीजिएगा। शायद कि आप लोग वो वाला प्रोग्राम सुनते नहीं है। और अब मैं पर्सनली हर बंदे को तो मैसेज करके बता नहीं सकता कि इस नंबर पे जो है आप कॉन्टेक्ट नहीं कीजिएगा, रेडियो पे सारी दुनिया को बता दिया, तो पर्सनली बताना जो है ना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। और बाज़ूकात ये है कि कभी डेटा नहीं होता, कभी यह है पैकेजेस की भी, आपको पता है कि पैकेजेस भी काफी महंगे हैं भाई। पैकेज तो खैर जो है ना मैंने कभी लगाया नहीं है तो ये वाला मामला है, ठीक है ना। खैर आप लोगों को तो गर्ज नंबर से थी, रबते से थी, रबता तो मेरा आप लोगों के साथ हो गया भाई 0307-27-00-666 पे।

आयजा नूर को भी मेरी तरफ से सलाम कहिएगा, और आयजा नूर को मेरी तरफ से जो है ना बहुत सारा प्यार माशाल्लाह अब बड़ी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हानी। इस तरह ना कि कभी हम भी बच्चे थे और अब हम भी बड़े हो गए हैं। हाँ, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फॉर बींग टाइम, मतलब ये कि

किसे कहते हैं, ये नीली आंखों वाले को कहते हैं या पीली आंखों वाले को कहते हैं शिनोगे? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि शिनोगे किसे कहते हैं, मतलब जिसकी वो क्या कहते होते हैं बुरी बुरी आंखें होती हैं, या लाइक शिनोगे उसे कहते हैं जिसकी नीली आंखें होती हैं, किसे शिनोगे किसे कहते हैं, मुझे जरा ये बात एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आरजे आप अपना आरजे आप बताओ कि आपकी शादी ले ले ले ले ले ले ले ये खुदा पाका। ये हाजी शाह से मैसेज आया जी, और बड़ा मुश्किल टाइप का एक मैसेज इन्होंने लिखा है, और फिर इसका जवाब मैं आपको फिर कभी किसी टाइम में दूंगा। सर रिक्वेस्ट है सॉन्ग लगा दें प्लीज, जीना तो चाहा था क्यों जीना पड़ा मुझे, ये सॉन्ग मतलब जो ना सुना दें मेरे लिए, ये सॉन्ग प्ले कर दें, कोशिश करते हैं आपके लिए प्ले करने की। हेलो सर आप कैसे हैं, थैंक यू थैंक यू। अच्छा ये थैंक यू किसने लिखा है, ये थैंक यू नहीं होता बल्कि थैंक यू होता है। हेलो सर आप कैसे हैं, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत आइडिया मिल गया है नावल के लिए, क्या आप मुझे एक प्यारा नाम बोल सकते हैं नावल के लिए, और टॉपिक ये वाला अच्छा था कि क्या किसी से सारी उम्र मोहब्बत हो सकती है, तो हाँ मोहब्बत सारी उम्र एक ही इंसान से होती है, अगर चेंज होने वाली मोहब्बत होती तो फिर ये टाइम पास होता है। आई एम हुरिया फ्रॉम तोताली बुनेर से हमारा साथ दे रही है जी। हुरिया नावल के हवाले से मुझसे पूछ रही है, और नावल का एक नाम पूछ रही है, नावल का नाम मैं आपको क्या बताऊं, नावल नावल नावल नावल, ये आप सोचने वाली बात है भाई।

अच्छा जी, नावल के हवाले से, नावल नावल नावल नावल इस तरह ना हुरिया कि आप बहुत सारी मैं अब एक मिनट मुझे सोचने दें, आप अपने नावल का नाम इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा आपको जो भी अच्छा लगता है, ठीक है। सारी उम्र तुम, सिर्फ तुम्हारे नाम, एक दिल एक मोहब्बत, वफा की आखिरी हद, तुम ही तो हो, उम्र भर का इंतजार, मोहब्बत एक बार होती है, दिल ने तुम्हें मतलब जाना सॉरी दिल ने तुम्हें चुना था, इसके अलावा एक मिनट, आखिरी सांस तक तुम, एक नाम दिल में, तुम से शुरू तुम पर खत्म, हमेशा तुम, मोहब्बत का आखिरी वर्क, वही एक शख्स, रूह का रिश्ता, दिल की अमानत, और एक मिनट, तुम मेरी दुआ में रहे, इश्क जो वक्त से ना रहा, या इश्क जो वक्त से ना हारा, चांद दुआ और तुम, अमर मोहब्बत, सारी उम्र तुम, आखिरी सांस तुम, या आखिरी सांस तक तुम, इश्क जो वक्त से ना हारा। ये नाम जो है ना आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको अगर खूबसूरत लगता है तो वो आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये नाम आपने सिलेक्ट करने हैं, मतलब इनमें से आप चेक कर लीजिएगा, जो भी मतलब इनमें से आप रखना चाहें तो रख सकती हैं।

अच्छा ये ना कि मैं कहना चाहूंगा हुरिया यहाँ पे कि सबसे पहले तो आपका दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये जानकर वाकई जो है ना खुशी हुई कि आपने अपने नावल का नाम सिर्फ तुम रखा, नाम भी बहुत खूबसूरत और मतलब ये ना कि इसके अंदर एक खामोश सी मोहब्बत, एक इंतजार और एक वफा की खुशबू महसूस होती है। और ये जानकर तो मजीद हैरत हुई और खुशी भी हुई कि आपने अपने दूसरे नावल चांद सितारा में के तौर पर मतलब जो है ना शामिल किया और खुद को हीरोइन बनाया। एक लिखने वाले के लिए इस बात तो शायद यही होती है कि उसके लफ्ज किसी दूसरे की मतलब जो है ना बोलूं लव साथ नहीं दे रहे, वो लव साथ ना दें तो क्या महसूस होता है। देखें इस तरह ना कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका कलम इसी तरह मोहब्बत, खुलूस और खूबसूरत एहसासात के रंग बिखेरता रहेगा। लिखने वाला दरअसल जो है ना अल्फाज नहीं लिखता, वो अपने दिल के मौसम को कागज पर उतारता है और जब नियत साफ हो तो तहरीर खुद बहुत जो है ना दिलों तक पहुंच जाती है। और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं कि आपका नावल जल्द मतलब जो है ना शाया हो और कायरीन जो है ना मतलब नावल पढ़ने वाले उसे पसंद करें और आपका नाम एक बेहतरीन नावल निगार के तौर पर पहचाना जाए, जाना जाए। लिखती रहें, ख्वाब देखती रहें और अपने अल्फाज को लफ्जों से मतलब ये ना कि हाँ लिखती रहें, ख्वाब देखती रहें और अपने लफ्जों से नई नई दुनियाएं जो है ना या दुनियाएं आबाद करती रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दीजिए और आपकी मतलब ये मेहनत है, ये रंग लय, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए।

मेलिसेंस, एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि मेलिसेंस कहता हूँ यहाँ पे कि कभी कभी जिंदगी कुछ इंसानों के साथ बहुत सख्त खेल खेल जाती है, ऐसा खेल जिसमें खुशियों के हिस्से कम और आजमाइशों के रास्ते ज्यादा होते हैं। कुछ लोग बचपन ही से मतलब जो है ना महरूमियों के साथ बड़े होते हैं, कभी माँ की कमी, कभी बाप के सहारे की कमी, कभी मोहब्बत की कमी, और कभी सिर्फ ये एहसास कि वो दूसरों जैसे नहीं है। जनाब ऐसे इंसान बाहर से तो मजबूत नजर आते हैं, मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, महफिलों में शामिल होते हैं, मगर अंदर से वो टूटे फूटे होते हैं। उनके दिल भी बहुत सी कहानियां देख चुके होते हैं, उनके दिल में बहुत सारी कहानियां दफन होती हैं, बहुत सारे जख्म छुपे होते हैं, और बहुत सारी ऐसी खामोश चीखें होती हैं जो कभी जबान तक नहीं आती। मैं लेसन्स कहना चाहता हूं यहां पे कि

मैं लिसंस कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि और जब कोई उनके एहसासात को नहीं समझता, जब कोई उनके अल्फाज की गहराई को नहीं सुन पाता तो उन्हें तकलीफ होती है। एक ऐसी तकलीफ जो लफ्जों में नहीं आती, बस दिल के अंदर कहीं बहुत गहरी होती चली जाती है, बहुत गहराई में बैठ जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इंसान दुनिया से दूर होने लगते हैं, खामोश रहने लगते हैं और अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं। जनाब, बाज़ औक़ात इंसान दुनिया से नफरत इसलिए नहीं करता कि बुरा है, बल्कि इसलिए करता है कि उसे समझा नहीं गया, वो मोहब्बत चाहता था मगर उसे सिर्फ गलत फहमियां मिलती हैं। वो अपना यह चाहता था मगर उसे तन्हाई दी गई। वो सुनना चाहता होता है मगर उसे खामोश कर दिया जाता है। और ऐसे ही लोग या ऐसे ही लोगों में यतीम बच्चों की जिंदगी सबसे ज्यादा हसास होती है। उनके लिए हर रिश्ता कीमती होता है, हर मुस्कुराहट अहम होती है और हर थपकी एक दुनिया के बराबर होती है। मगर बदकिस्मती यह है कि दुनिया उनके अंदरूनी कैफियत को नहीं देख पाती, सिर्फ उनकी जाहिरी मजबूती देखती है। लेकिन सच यह है कि जो इंसान जितना ज्यादा टूटा होता है वो इतना ही ज्यादा दूसरों के दर्द को समझता है, उसके लफ्ज सादा नहीं होते, उसके लफ्जों के पीछे एक पूरी कहानी होती है। वो कम बोलता है मगर गहराई से बोलता है, वो कम सुनता है कम हंसता है मगर सच्चाई से मुस्कुराता है। जनाब, कुछ लोग हमारी जिंदगी में आकर भी हमारे अंदर को नहीं पढ़ पाते और कुछ सिर्फ एक नजर में हमारी पूरी कहानी समझ लेते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई आंखों से देखता है और कोई दिल से पढ़ता है, कोई दिल से सुनता है। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है कि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा खुश नहीं होता और हर खामोश इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ लोग बस अंदर से बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। ये दरअसल सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसे दिल की आवाज है जिसने जिंदगी को बहुत ज्यादा करीब से देखा है, बहुत सख्ती से जिया है और बहुत खामोशी से सह ली है उसने जिंदगी। मैं कहना चाहूंगा कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी उम्र तो बढ़ती रहती है मगर उनका बचपन कहीं रास्ते में ही रह जाता है, जहां हंसी कम और खामोशियां ज्यादा होती हैं, जहां हाथ थामने वाले कम और छोड़ने वाले ज्यादा होते हैं, जहां सवाल बहुत होते हैं मगर जवाब कोई नहीं देता। जनाब, ये कहानी उस शख्स की है जिसने जिंदगी को आसान नहीं पाया, जिसने हर खुशी से पहले एक कीमत अदा की है, जिसने हर मुस्कुराहट के पीछे एक आंसू छुपाया है और जिसने हर मैं ठीक में हूं, जिसने हर मैं ठीक हूं इसके पीछे एक टूटा हुआ दिल संभाल कर रखा है। कभी कभी ऐसा होता है लिसनर्स के कि इंसान दुनिया के सामने मजबूत खड़ा होता है, हंसता है, बोलता है, सबके साथ होता है, मगर जब रात की खामोशी या रात खामोश होती है, जब सब लोग सो जाते हैं, तो वही इंसान अपने अंदर के शोर से लड़ रहा होता है। सवाल होते हैं, एक ऐसी तन्हाई होती है जो किसी के साथ होने के बावजूद भी खत्म नहीं होती। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जनाब, जब कोई इस दर्द को देखकर भी ना समझे या ना समझ सके, जब कोई आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो देख ले मगर आंखों के पीछे छुपे तूफान को ना पढ़ सके, जब कोई आपके लफ्ज सुन ले मगर जो है ना उनके पीछे छुपी चीखों को ना सुन पाए। ये
یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان دنیا سے نہیں لوگوں کی بے حسی سے تھک جاتا ہے، وہ نفرت نہیں کرتا، وہ بس خاموش ہو جاتا ہے، وہ سب سے بات کرنا چھوڑ دیتا ہے، خود کو سمیٹ لیتا ہے، ایک ایسی دیوار بنا لیتا ہے جس کے اندر صرف وہ ہوتا ہے اور اس کی ٹوٹی ہوئی یادیں ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے لسنرز کے، کچھ زخم دکھائی نہیں دیتے ہیں مگر وہ سب سے زیادہ جو ہے نا گہرے ہوتے چل جاتے ہیں۔ کچھ کہانیاں کتابوں میں نہیں لکھی جاتی ہیں، وہ صرف دلوں میں دفن رہتی ہیں، اور کچھ لوگ اپنی پوری زندگی اسی انتظار میں گزار دیتے ہیں کہ شاید ان کی خاموشی کو سمجھ لے کوئی، ان کے لفظوں کے پیچھے چھپی کہانی پڑھ لے کوئی، ان کے دل کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑ دے کوئی۔ جناب یہ کہانی کسی ایک انسان کی نہیں ہے، یہ ان سب کی ہے، ان سب کی کہانی ہے جو مسکراتے ہیں مگر اندر سے رو رہے ہوتے ہیں، جو سب کے ساتھ ہوتے ہیں مگر اکیلے ہوتے ہیں، جو سب کو سناتے ہیں مگر خود کسی کے سننے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور شاید سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ لسنرز، جو لوگ سب سے زیادہ ٹوٹے ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں، اور جو لوگ سب سے زیادہ خاموش ہوتے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ شور چھپا ہوتا ہے۔ میں لسنرز کہنا چاہوں گا یہاں پہ کہ

अब जरा सुन लें आप लिसनर्स के, ये तहरीर सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मेरी पूरी, ये मेरी अपनी जिंदगी का एक सच है। मैंने ये सब इसलिए नहीं कह रहा मैं कि थक गया हूं या मैंने हार मान लिया, नहीं जनाब, बात कुछ और है। मैं आज भी जिंदगी के साथ खड़ा हूं, आज भी इसका मुकाबला कर रहा हूं, आज भी नए दिन को एक नई उम्मीद के साथ देखता हूं। मगर सच यह है कि मैंने जिंदगी को बहुत ज्यादा करीब से देखा है, इसके नर्म चेहरे भी देखे हैं और इसके सख्त चेहरे भी देखे हैं। मैंने खुशियों को आते भी देखे और जाते भी देखे हैं, मैंने लोगों के साथ चलते भी देखा है और अचानक रास्ता बदलते भी देखा है। मैंने वो लम्हे भी देखे हैं जब इंसान हंसता हुआ अंदर से टूट रहा होता है, और वो वक्त भी देखा है जब खामोश चीख बन जाती है। जनाब ये बात कहानी सुनाने की नहीं, ये एहसास बांटने की है। शायद हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां वो मजबूत भी होता है, अकेला भी होता है। मैंने भी कुछ ऐसे ही लम्हे गुजारे हैं जहां लफ्ज साथ नहीं देते और दिल सिर्फ खामोश। मकसद शिकायत नहीं है बल्कि ये बताना है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक कहानी होती है, हर मजबूत इंसान के अंदर एक लड़ाई चल रही होती है, और खामोश और हर खामोश दिल के अंदर एक ऐसा तूफान छुपा होता है। मैं आज भी जिंदगी से लड़ रहा हूं, मैं आज भी उम्मीद रखता हूं, आज भी आगे बढ़ रहा हूं। बस फर्क यह है कि अब मैंने जिंदगी को समझ लिया। अब मैं कि हर दर्द होता है कभी कभी इंसान को मजबूत बना देता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस कहानी को कोई गलत रुख ना दीजिएगा।

नहीं, इसका मकसद ये है कि मोहब्बत में धोखे की कहानी समझा जाए। जनाब, ये एक आम से इंसान नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने यतीमी में जिंदगी गुजारी है, जिसने बचपन से ही बहुत सी कमियों के साथ जीना सीखा है, जिसने सहारा मांगने के बजाय खुद को संभालना सीखा है और जिसने खामोश रहकर भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मैं ये सब इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग गलत अंदाजे ना लगाएं। हर दर्द मोहब्बत का दर्द नहीं होता, हर खामोशी की शिकायत नहीं होती और हर आंख की टूट फूट की निशानी नहीं होती। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ जिंदगी के हालात लिखते हैं, ना कि मोहब्बत के अंजाम। ये मेरी अपनी जिंदगी, मैंने जिंदगी को बहुत ज्यादा करीब से और इसके खामोश लम्हे भी, मैंने वो वक्त भी देखा है जब इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद को खाली महसूस करता है, और वो वक्त भी देखा है जब कुछ ना होते हुए भी वो जीने की हिम्मत नहीं छोड़ता। और ये याद रखिएगा लिसनर्स, कि यतीमी का सफर एक ऐसा सफर होता है कि वहां इंसान रोता नहीं, बस मजबूत होना सीख लेता है। वो शिकायत नहीं करता, बस खामोशी से हालात को कबूल कर लेता है। वो कम बोलता है मगर उसके अंदर एक पूरी कहानी चल रही होती है। इसलिए ये बात वाजह रहनी चाहिए कि ये किसी मोहब्बत की नाकामी या धोखे की कहानी नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है। एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने कम उम्री से ही दुनिया को अपने अंदाज से समझना शुरू कर दिया है। और ये दुनिया बहुत ज्यादा बेहस है, ये दुनिया बहुत ज्यादा बेहस है। ये दुनिया बहुत ज्यादा बेहस है लिसनर्स। कभी कभी इंसान को जिंदगी एहसास बहुत गहराई से दिला देती है कि दुनिया बहुत ज्यादा बहुत बेहस है। ये वो दुनिया है जहां लोग आपको आपकी मुस्कुराहट से पहचानते हैं मगर आपके अंदर छुपे हुए दर्द नहीं देखते, जहां सब आपकी आवाज तो सुनते हैं मगर आपकी खामोश चीखों को कभी महसूस नहीं करते, आपकी खामोश चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंचती, जहां सब आपके साथ खड़े होते हैं मगर मुश्किल वक्त में अक्सर साए भी साथ छोड़ जाते हैं। बेहसी का मतलब हमेशा नफरत नहीं होता जनाब, कभी कभी ये सिर्फ ना समझ पाने का नाम होता है। लोग अपने अपने हिस्से की जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि दूसरों के एहसास उनके लिए गैर जरूरी हो जाते हैं। कोई किसी की कहानी नहीं सुनता, सब अपनी अपनी जल्दी में होते हैं, सबको अपने जख्म ज्यादा बड़े लगते हैं और फिर इंसान आहिस्ता आहिस्ता खामोश होना शुरू कर देता है, वो बोलना कम कर देता है, शिकायत छोड़ देता है और अपने ही अंदर एक ऐसी दुनिया बना लेता है जहां वो खुद भी अकेला होता है और अपने दर्द का वो वाहिद गवाह भी खुद ही होता है। जनाब, असल तकलीफ ये नहीं है कि दुनिया बेहस है, असल तकलीफ ये है कि इंसान उम्मीद लगाता है कि शायद कोई उसकी खामोशी को समझ ले, मगर वक्त के साथ उसे समझ आता है या समझ आ जाती है ये बात कि हाल ये हर सुनने वाला उसे समझ आ जाता है कि हर कोई सुनने के लिए नहीं, सिर्फ गुजरने के लिए आता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक सच बाकी रहता है कि हर बेहसी के बावजूद भी कुछ दिल ऐसे होते हैं जो वाकई समझते हैं, जो खामोशी में छुपे लफ्ज पढ़ लेते हैं और जो किसी के दर्द को सिर्फ सुनने के बजाय महसूस कर लेते हैं। लिसनर्स, इस मौजू पे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जिंदगी है मगर ये ना, आखिर मैं कहना चाहता हूं यहां पे कि कुछ थोड़ी सी बातें करना चाहता हूं और मैं आप लोगों से इजाजत, क्योंकि टाइम कम है और फिर

मैं आखिर में लिसनर्स यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि जिंदगी से है गिला या जिंदगी से है ये गिला, मगर फिर भी हमें जीना तो है। क्या करें, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब नहीं होते, और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर चलना हमारी मजबूरी भी होते है और किस्मत भी। जिंदगी कभी कभी बहुत कुछ ले लेती है और बदले में सिर्फ सब्र देती है। इंसान हंसता भी है, बोलता भी है, चलता भी है, मगर कहीं अंदर एक खामोश सा मतलब जो है ना, दर्द मुसलसल जाग रहा होता है, और ये दर्द किसी को दिखाई नहीं देता, बस दिल ही दिल में महसूस होता है। जनाब, हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे जरूर आते हैं जब दिल कहता है कि बस अब और नहीं, लेकिन फिर एक सुबह एक और उम्मीद और एक और हौसला हमें खड़ा कर देता है। शायद यही जिंदगी है। गिले भी हैं, शिकवे भी हैं, मगर फिर भी जीना है। और सबसे अजीब बात यह है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी कभी कभी खुद को खाली महसूस करता है इंसान। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में यहाँ रहेगा, खुश रहिएगा, और अब हमने सब्र करना सीख लिया है, समझ लिया है कि कौन क्या है, कौन क्या है, महसूस कर लिया है। जो कोई शख्स अगर बोलना रहा हो ना अपने लफ्जों से, अपने अल्फाज से, इसके पीछे भी ये कोई बहुत बड़ी वजह होती है। बोलना सबको आता है भाई, लेकिन बाज़ुकात खामोशी बेहतर होती है। बहुत सारे सवाल